थीसी जो तू दे सोई हो पाई रहाऊ। सब तेरी तू सबने त्याया जिसनों कृपा करह तिन नाम रतन पाया।

सारी सेवकन को सैव गुण सुख दियो सतरन को पालमो बाद कियो घाट घाट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पशानत चीटी ते कुंज

के सुखी। एक एक की पीर पशान घट घट के पट पट की जान। जब उदकर्ख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ।

कहि पूपा। अंडज जेरज सेतज किनी उतपुज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पयो संक्र इकैठा। सगरी सृष्टि दिखाए।

सागरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण खाता जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तो हवा मरे।

पौड़ी। तिथे तू समरथ जिथे कुए नाहे, उथे तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरे, छड़ जाहे पौ जल बिखम अस।

शासन करती। बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती पाए दशमी प्रथम भगवती समर्थ है गुरु नानक लईतिया है हरियंकित कुरते अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याग सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर करना उन्होंने सब ताई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब ताई हुए सहाय दशा पाची ने पुत्रात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पारदार दत्ते अंतर के खर्च से बोलो जी वाहे गुरीबन वाहज आप जी के पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां चपियां तपियां जिन्हें नाम चपया बन चकिया देख चलाई ते वाहि देह कंजट कीता तना प्यारे सत्यारे की कमाई दत्ते अंतर के बोलो जी वाहे गुरु जिन्ना सिंघा सिंघियां धर्म हे सी दिते बांध बांध कटवाए खोपरियां लवाइया चरकरियां चढ़े आ रहे नचराए गए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं आ रहा सी किस देखे संसंग निभाया ते ना ही कमाई दत्ते अंतर के बोलो जी वाहे गुरु पहना तख्ता वाहगुरु आ रहे दत्ते अंतर के बोलो जी वाहे गुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चेता है चित आवन का सर का सर्व सुख हो गए जहां जहां गुरु खालसा साहब तहार चेहरे आए देव देव की फतेह वृद्ध की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी से आए खालसा जी के बोलबाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा नु सिखी दान केश दान रैत दान विवेक दान उसारा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि यहां चंडे बुंगे जुगो जुगा अटल धर्म क्या जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत के राखे आप वाहे गुरु। गुरु की बनवाज पंथ सदा शाह दरदार जी गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जी ने तो आपके पंथ में छोड़िया गया उन्होंने खुले दर्शन दीदार से सेवा संभाल दादा अपने खालसा जी ने बख्शो ये न्योटिया की ओट गुरु न्यासिया द्यासे गुरु तान तान गुरु दार दिता जी दोए कर जोड़ करो अरदास तुत भावे ताने रास एक ही बनवाज जी आपके चरण का उन्होंने दरदास ने दिया आपने बख्शिश की दिया जी आपके चरणों में बाद पाया तो केंद्र बार दिता इस वे संध्या समय जान के आपके चरणों सोच दर दे रहा साधु पाठ किते ने कृपा करो भूया भुला चुका जी माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोच के सच खन प्रवान कुरबाणी का भाव सारिया संगत शांति की बात करो जी अगो तो शोध से पित्र बाणी चार बल बुद्धि बख्शिश करो विनवाज इस खुशी में आप जी बख्शिया दातों में पिद्र कराब शादी देगा तैयार करे हाजतार आप जी भोग लाओ शीर प्रसाद सार संगत की रचना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पित्र नाम जब बख्शिश करो दतार दुखा कलेचा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जीव की विनवाज कृपा करो आप जी बख्शिया दाता ज नगर चुट सवार प्रवान करनी आपके चरणा सेवा कर रहे सारे घर दिखा सिंगनिया तंदुरुस्ती बख्शो चाटी कर बख्शो तो सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा की भावना मंग बालता करो जी भावना दात बख्शिश करो की विनवाज अमृत वेले तो लैके दाते आई हैं साफ संगत जी दर प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ संगतों का दर से फिर फुर बेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी कृपा कर दतार सब सच्चे पातशाह दर कृष्ण दार दार बलबीर सिंह मुल्तानी दे गरीब नवाज जी तेरहवें जन्मदिन से दार पिता जी हो आप जी बख्शिया दाता धन्यवाद कर दिया बिन्त मैं खाद दार प्रवान करो गरीब नवाज काका बलबीर सिंह मुल्तानी तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शो चाहता करो कमाइया सबर करो जी गरीब नवाज अमरीत सिंह भाटिया के जन्मदिन से प्रवान बिन्त मैं बेटा प्रवान दतार अमरीत सिंह भाटिया तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शो धर्मदेश को दिया गया कार विचार गरीब नवाज जी काका गुरनूर सिंह के जन्मदिन के परिवार को एक हजार डॉलर भेटा करते प्रवान करो तार बख्शिश करो बच्चे तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शो कुछ की नाम से आज बख्शे करके चाली कला बख्श करो चाली कला बख्शे गरीब नवाज उतार जी काका गुरशरण सिंह के पहली कमाई गरीब नवाज दोह बच्चे पहली कमाई गरीब नवाज गुरशरण सिंह ने गरीब नवाज 600 डॉलर भेटा किता प्रवान करो तार बख्शिश करो दोनों बच्चों तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शो आने वाले समय की गरीब नवाज बच्चों तरक्की आवता जिंदगी बख्शिश करनी तरक्या बख्शिश करनी कमाइया सबर करनिया और दाता ने राहपत रखो गरीब नवाज सारे परिवार सुख रखो मेहर करो दतार खालसा मंदिर छे कौम एकता दुआग प्यार की बख्शिश करके सत दाद बख्शो चैनल जोड़ो दुवाणी का प्यार बख्शिश कर दतार हर मैदान जवान फतेह बख्शे बालता करो जी गरीब नवाज दूर दराज कराने बैठिया लाइव कदा की शर्म करनी है सारी संगत हाल जी प्रवान करिए लिखे लाओ सतार अपने कृपा की संगत बख्शे
ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰੀ ਚੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਭ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ, ਕਾਰਜ ਵਾਧੇ ਹੋ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਆਓ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਬਿਹਤਰ ਗੁਨਾਮੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਕਸਤ ਦਰਬਾਰ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਮਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਬਖਸ਼ੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੰਨਾ ਤੁਨਾ ਦੀ ਬਣਾਓ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਿਆ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਵੀ ਚੜਾਇਓ, ਸਾ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝਿਆ, ਖੋਜ ਜਬਦ ਮਹਿਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਗੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਗੇ, ਬਜੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾ ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮੈਂ, ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ

जिस इंसान दे पर प्रभु सृष्टि का मालक वाहिगुरु दयावान हो जाता है, भए कृपाल गुसाइया, उस इंसान दे सारे फिकर दुख कलेश मिट जाते हैं। जिसनु गुरु ने आप नाम दी दात दित्ती, अपने चरणों विच उसनु थां दे दित्ती, आप रखिया उसनु

अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन ते सेवा समा

नसी जई बिन नाव पत जाए। अष्टपदी दस वस्तु ले पच पावे एक वस्त कारण बिखोट गवावे एक पी ना दे दस पी हिर ले तो मूढ़ा कहो कहा करे। जिस ठाकुर स्यो नाही चारा ताको की जय सद नमस्कारा झाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहू मन उठा। जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगंत साहु अपनी देरा सात पीत बरत अनद उलास अपनी अमान कछ बहुर साहुले अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस्त तिस आगे रख प्रभ की आज्ञा मान माथ उसते चौगुन कर निहाल नानक साहिब सदा दयाल। अनेक पांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिरख की छाया स्यो रंग लावे ओह बिन सह ओह मन पछतावे जो दी सह सो चालन हार लपट रहे ओ तह अंध अंधार बटाऊ स्यो जो लावे नेह ताको हाथ न आवे केहे मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई। मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या राज जोगन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती असो वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर कर्त गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हस्त पर दर्भ खोहि रहें मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को ताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा बिन बूझे मिथ्या सब पये सफल देह नानक हर हर नाम लये। बिरथी साकत की आर जा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ता कह दुर्गंध बिन सिमरन बिन रैन बृथा बिहाये मेघ बिना ज्यो खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यो कृपन के निरार्थ दाम तन तन तेजन जे कट बस्यो हर नाओ नानक ताके बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुख हूँ गंढ लावत जन नहार प्रभु पर बीन बार पेख न कहू पीन अवर उपदेश आप ना कर आवत जावत जन्म मर जिसके अंतर बस निरंकार तिसकी सीख कर संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेंती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आप है माने आप है आप करत निबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाव से अनप सगल ते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत जिस पावे तिस लय लड़ लाए थान थनंतर रहया समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी। सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी जिह प्रसाद शक्ति ही अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जिह प्रसाद सुगंधत तन लावह तिसको सिमरत परम गत पावह जिह प्रसाद बसह सुख मंदर तिसह त्याए सदा माने अंदर जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरोह तिस रसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग।
जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावहै तिसह त्याग कत अवर लुभावहै। जे प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय। जे प्रसाद तुझ सबको मन मुख ताको जस रसन बखाना। जिह प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जपत दरगह मान पावहै नानक पत सेती कर जावहै। जिह प्रसाद आरोग कंचन देही लिवलावहो तिस राम सुनेही। जिह प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावहै हर हर जस कहत। जिह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताकै। जिह प्रसाद तुझको न पहुँचै मन सास सास सिमरोह प्रभ ऊचे। जिह प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करे। जिह प्रसाद आपूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जिह प्रसाद असवहस्त असवारी मन तिस प्रभ को कबहू न बिसारी। जिह प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सदत सहते आई। तिसहते आए जो एक अलख इहा उहा नानक तेरी रख। जिह प्रसाद करह पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जिह प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी। जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। जिह प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जिह प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कह। जिह प्रसाद सुनह कर्ण नाद जिह प्रसाद पेखह बिस्माद। जिह प्रसाद बोलह अमृत रसना जिह प्रसाद सुख सहजे बसना। जिह प्रसाद हस्त कर चल है जिह प्रसाद संपूर्ण फल है। जिह प्रसाद परम गत पाव है जिह प्रसाद सुख सहज समाव है। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लाग हो गुर प्रसाद नानक मन जाग हो। जिह प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल ना मनो बिसार। जिह प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूल तू ताको जाप। जिह प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसह जान मन सदा हजूरे। जिह प्रसाद तू पावह साच रे मन मेरे तू ता स्यो राच। जिह प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुन गाओ। रब कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल बिगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए। सर्व निदान प्रभ तेरी माया आपहु कछु न किन्हु लया। जित जित लावहु तित लगह हर नाथ नानक इनकै कछु न हाथ। सलोक अगम अगाध।

अष्टपदी। साधक संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत, साधक संग मिट अभिमान, साधक संग प्रगट सो ज्ञान, साधक संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत निबेरा, साधक संग पाए नाम रतन, साधक संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा वर्ण कौन पुरानी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी, साध के संग अगोचर मिला, साध के संग सदा प्रफुल्ल, साध के संग आवह बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग होए सब की रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कतहू तावै, साध संग अस्तित मन पावै, साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत, साध संग किस्यो नहीं बैर, साध कै संग ना बीगा पैर, साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध कै संग नाही होता, साध कै संग तज सब आप, आपे जान साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई, साध कै संग न कबहू तावै, साध कै संग सदा सुख पावै, साध संग बस अगोचर रह, साधु कै संग अजर सह, साध कै संग बस है थान ऊंचे, साधु कै संग महल पहुंचे, साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म, साध कै संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान, साध कै संग सब कुल उधार, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार, साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्व थान गम, नानक साध कै संग सफल जनम, साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल, साध कै संग कलुखत हरै, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिशरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावै, साध कै संग ना बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाउ, साध संग हर के गुण गाओ, साध कै संग ना मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा, साध संग पय आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग, साध की महिमा वेद न जान है, जेता सुन है तेता बखियान, साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूचते मूची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई, सलोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एक सुबिन कोए, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल मह कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक, जैसे सूर सर्व को सोख, ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग को लागै तुलपवान, ब्रह्म ज्ञानी कै तीरज एक, जो बसदा को दै को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव, नानक ज्यों पाव।

दर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्बल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार महा। ब्रह्म ज्ञानी के नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी के होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी के एक है रंग, ब्रह्म ज्ञानी के बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संघेता। ब्रह्म ज्ञानी के होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस कर प्रभाव, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोज है महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अध्याखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना है, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना है। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। सलोक उर तार जो अंतर नाम, सर्व में देख भगवान। निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक ओ अपरस सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन मह प्रीत निरंजन दर्श। पर त्रय रूप न पेख नेत्र, साधकी टहल संत संग हेत। कर्ण ना सुने कहु की निंदा, सब ते जान आपस को मंदा। गुर प्रसाद भिख्या पर हर, मन की वासना मन ते टर। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस। भैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते हुए भिन्न। कर्म करत हो वह नेह कर्म, तिस वैसनो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग राचै। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवर है नाम जपावै, नानक ओह वैष्णो परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग। मन ते मिनसै सगला परम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल कर नित नीत, मन तन अर्पै बिसन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन प्रबोध, राम नाम आत्म है शुद्ध। राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जोन न आवै। वेद पुराण सिमृत बूझै मूल, सुख मह जानै अस्थूल। चहु वरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहु वरना मह जपै को नाम। जो जो जपै तिसकी गत होए, साध संग पावै जन कोए। कर कृपा अंतर उर तारै, पस प्रेत मुगत पात्र को तारै। सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। काहू जुगत कित न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास। आत्म राम तिस नदरी आया, दास तिसन तिन पाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह प्रवान।

परी। संत कै दुखन आर जा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुट्टै, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक मह पाए। संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन शोभा देहीन, संत के हते को रखै न कोए। संत कै दुखन थान प्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक पीतरै। संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए। संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै, संत कै दुखन सब को चलै, संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच नीचाए। संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावै ताओ पीगत पाहे। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खेन टिकन ना पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजते हीन, संत का निंदक दुखिया अर दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दोख मह दोख, नानक संत पावै ता उसका पी होए मोख। संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसै का नहीं मित, संत के दुखी को डान लागै, संत के दुखी को सब त्यागै। संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बेकारी, संत का दुखी जन्म मरै, संत की दुख ना सुख ते टरै। संत के दुखी को नाही ठाओ, नानक संत पावै ता लय मिलाए। संत का दुखी अध बीस ते टूटै, संत का दुखी कितै काज न पहुँचै, संत के दुखी को ध्यान प्रमाइयै, संत का दुखी उजड़ पाइयै। संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किछ नाहे, आपन बीज आपे ही खाहे। संत के दुखी को अवर न रखनहार, नानक संत पावै ता लय उबार। संत का दुखी यों बिल लाए, ज्यों जल भ्यून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै। संत का दुखी छुटै अकेला, ज्यों बुआड़ थिल खेत माहि दुहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस पावै सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगह मिलै सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मर ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजै ना आसा, संत का दुखी उठ चलै निराशा। संत कै दुख ना त्रिष्टै कोए, जैसा पावै तैसा कोई होए, पया किरत ना मेटै कोए, नानक जानै सच्चा सोए। सब घट तिसके ओ करनै हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभ की उस्तुत करो दिन रात, तिस हते आवो सास गिरास। सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आप करनै हार, दूसर कौन कह बीचार। जिसनो कृपा करै तिस अपन नाम दे, बट भागी नानक जन से सलोक। तजो होसिया नप सुर जन हो, सिमरो हो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पहु जाए। अष्टपदी। मानुक की टेक वृथि सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रह अघाए, बहुत न तृष्णा लाग आए। मारे रखे को आप, मानुक क्या किछ नाही हाथ, तिसका हुकुम भूत सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन ना लागै कोए, उस सत मन मह कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लेह जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग। चरण चलो मार्ग गोविंद, मिटह पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक ऊजल मथा। बड़ पागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो कर है बीचार, से तनवंत गनी संसार। मन तन मुख बोल है हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी,
एको एक एक पछाना तुत की हो सो जी जाना नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया गुर प्रसाद आपन आप सुझे तिसकी जानो तृष्णा बुझे साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते हो हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिए जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसह न लागह दुख जिसको हर प्रभु मंचित आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोधत सोधत सोधत सीझिया गुर प्रसाद तत् सब बूझिया जब देखूं तब सब किछ मूल नानक सो सुखम सोई अस्थूल नह किछ जन्म नह किछ मरे आपन चलित आप ही करे आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मह आप अनेक जुगत रच थाप उथाप अवनाशी नाही किछ खंड तारण तार रहे ओ ब्रह्मंड अलख अपे उपरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो शोभावंत सगल संसार उधर तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदारण प्रभ के सेवक दुख बिसारण आपे मेल लय कृपाल गुरु का शब्द जप पय निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनों कृपा करह बट भागे नाम जपत पावह बिसराम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान जो किछ करह सो प्रभ कै रंग सदा सदा बस हर संग सहज सुभाए होवे सो होए करण हर पछाण सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तिस महे समाये ओए सुख निदान उन्हूं बने आए आपस को आप दीनो मान नानक प्रभ जन एक हो जान सलोक सर्ब कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाकै सिमरन उधरिया नानक तिस बलहार अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जी आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जे सौ प्राणी लोचै कोए तिस बिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत हुए नाही मोह प्रभ की जोत सगल घट सोह तनवंता हुए क्या को गर्व है जा सब किस किसका दिया दर्ब है अत सूरा जे को कहावे प्रभ की कला बिना कहता वै जे को हुए बह दातार तिस देन हार जान गावार जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सो जन सदा अरोग ज्यो मंदर को थम है थम मन त्यों गुर का शब्द मन है अस्थम मन ज्यो पाखाण नाव चढ़तर प्राणी गुर चरण लगत निस्तर ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन हुए विगास ज्यो महा उद्यान मह मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे तिन संतन की बाँचो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूरख काहे बिल्लाई है पुरब लिखे का लिखिया पाई है दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तसह चितार जो कछ कर सोई सुख मान पूला काहे फिर अजान कौन बस्त आई तेरे संग लपट रहे और रसलो भी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पत सेती कर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज अभिमान लिहो मन मोल राम नाम हृदय महतो लाद खेप संत संचाल अवर त्याग बिख्या जंजाल तन तन कह सब कोए मुख उजल हर दरगह सोए इहो अपार विरला वापार नानक ताक सद बलिहार चरण साध के तोए तोए पियो अरब साध को अपना जियो साध की तूर करो इशनान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वड भागी पाइए साध संग हर कीर्तन गाइए अनेक बिघन ते साधु राख हर गुण गाए अमृत रस चाख ओट गही संत है दर आया सर्व सुख नानक तेह पाया
ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਜੀ ਵਲ ਨਿਹਾਰ ਭੂਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੀ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਹੇ ਸਭ ਕਿਸ ਤਿਸ ਕਾ ਉਹ ਕਰਨੈ ਜੋਗ ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਵਾ ਨਾ ਹੋਗ ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਣੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਐ ਤਿਹ ਲੋਏ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ ਹੋਏ ਸੱਚ ਕਰਣੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਤ ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤ ਮੁਖ ਕਹਿਤ ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾ

ਪਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪਰਸੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮਹਿਰਾਖ ਮਾਨੁਕੀ ਤੂਪੀ ਤਿਆਗ ਤਿਸਤੇ ਪਰਹ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਕੋਏ ਸਰਵ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ ਆਪੇ ਬਿਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਓ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਮਨ ਇਹੋ ਅਨਰਾਓ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ ਜੋ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ ਤਿਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾਂ ਕੈ ਸਰਬ ਤੋਕ ਸੁਣੀਐ ਘਰ ਤਾਂ ਕੈ ਰਾਜ ਮਹਿਰਾ ਜੋਗ ਮਹਿ ਜੋਗੀ ਤਪ ਮਹਿ ਤਪੀਸਰ ਗ੍ਰਸਤ ਮਹਿ ਭੋਗੀ ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਭਗਤ ਹੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਇਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੈ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾਹੀ ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿੰਦੇ ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ ਸੇ ਤੇਹ ਗੁਣ ਮਹਿ ਜਾ ਕੋ ਪਰਮਾਏ ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸਕੇ ਅਸਥਾਨ ਜੈਸਾ ਜਨ ਆਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਭੇਖ ਕਰਹਿ ਇਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਬਿਦਕੀਨੋ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਭ ਅਵਨਾਸੀ ਏਕੰਕਾਰ ਨਾਨਾ ਚਲਿਤ ਕਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹੀ ਪੂਰਹਿਓ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਰ ਬੰਤ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਓ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆਂ ਸਭ ਭਵਨ ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਗ ਉਧਰੇ ਸੁਨ ਸ੍ਰਵਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਜੋਤੇ ਪਦ ਮਹਿ ਸੋ ਜਨ ਗਤ ਪਾਏ ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੀ ਸਤ ਕਰਮ ਜਾਂ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ ਸਤ ਕਰਣੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ ਜਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸਹਿ ਸਭ ਭਲੀ ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ਵਿਸਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਤ ਨਿਰਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਏ ਨਾਮ ਜਪਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਕਰਣੈ ਹਾਰ ਅਵਰ ਨਾ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੀਆ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਤ ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਚ ਜਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ ਓਏ ਦਾਤੇ ਦੁਖ ਕਾਟਨ ਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਲੋਕ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਤੇ ਸੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਸੰਹਾਰ ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਭੇਖਨਹਾਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਧਿਆਵਨਹਾਰ ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਵਧਾਰੀ ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਵਕਤਾ ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਸ ਸੁਨਤਾ ਬੁਝਨ ਹਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਨ ਮੂਲ ਪਛਾਨਿਆ ਜਾਂ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ ਬਸਤ ਮਾਹੇ ਲੇ ਬਸਤ ਗਡਾਈ ਤਾਂ ਕੋ ਨਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ ਬੂਝੈ ਬੂਝਨ ਹਾਰ ਵਿਵੇਕ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੂਜਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੈ
मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाना संग प्रभु का सेवक नाम कह रंग सेवक को प्रभु पालन हारा सेवक की रख है निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभु तारा नानक सो सेवक सास सास मारा अपने जन का पर्दा ढाक है अपने सेवक की सर पर रख है अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत रख है ताकि गत मित कोई न लाख है प्रभु के सेवक को न पहुंचे प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया नीकी कीरी महकल रख है पसम कर लश्कर कोट लख है जिसका सास न काटत आप ता को रखत देकर हाथ मानस जतन करत बहु पाप तिसके कर्तव्य व्यर्थे जात मारा न रख है अवर न कोय सर्व जिया का रखा सोए काहे सोच कर हरे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपिय पी अमृत हुमन तंत्र पिय नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिसके अवर ना ही दृष्टाया नाम तन नमो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन तृप्ताने मंथन नाम है नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सदकाम बोलो जस जेह बा दिन रात प्रभु अपने जन की नींदात करह भगत आत्म कह चाहे प्रभु अपने सिउ रह समाए जो होवा होवत सो जान प्रभ अपने का हुक्म पछान तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कहे एक न जानो आठ पहर प्रभ सह हजूरे कहो नानक से जन पूरे मन मेरे तिन की ओट लेह मन तन अपना तिन जन देह जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पाव है तिसके दर सब पाप मिटाव है अवर से आनप सगली छोड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो हो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसके संग सिख उधरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिख के बंधन काटै गुर का सिख बिकार ते हटै सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख वडभागी हे सतगुर सिख का हलत पलत सवार नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमार गुर के ग्रह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन मह सह आपस को कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सद त्यावे मन बेचै सतगुर के पास तिस सेवक के कारज रास सेवा करत हुए नेह कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस बिस्वे गुर का मन मान सो सेवक परमेश्वर की गत जान सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मह जन जन मह पार ब्रह्म एक है आप नहीं कछ परम सहस से अनप लया न जाई है नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाई है सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सुन कर बचन करन आघाने मन संतोख आतम पतियाने पूरा गुर अखियो जा का मंत्र अमृत दृष्ट पेख्या हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जेहबा एक उस्तत अनेक सतपुरख पूरन विवेक काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किन न पाई अनेक भगत बंधन नित कर है चरण कमल हृदय सिमर है सद बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने
एहो हर रस पावै जन कोए, अमृत पीवै अमर सो होए, उस पुरख का नाही कदे बिनास, जाके मन प्रगटे गुण तास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदे सेव को दे, मोह माया कै संग न लेप, मन मह रख हर हर एक। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परम मोह दुख तहते नासे, तपत माहे ठांड वरताई, अंध पया दुख नाठे पाई, जन मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे, पौ चूका निरपौ होए बसे, सगल ब्याद मंते खै नसे, जिसका साथ इन कृपा तारी, साध संग जप ना मुरारी, थित पाई चूके परम गवन, सुन नानक हर हर जसरवन, निर्गुण आप सरगुण पियो ही, कला तार जिन सगली मोही, अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिंदु जाना ही कोए, सर्व निरंतर एको सोए, ओत पोत रव्या रूप रंग, पहे प्रगा साध कै संग, रच रचना अपनी कल तारी, अनिक बार नानक बलिहारी, सलोक साथ न चाल बिन भजन, बिख्या सगली छार, हर हर नाम कमावना, नानक एहो तन सार। अष्टपदी संत जना मिल कर हो बीचार, एक सिमर नाम आधार, अवर उपाव सब मीत बिसार हो, चरण कमल रिद मह उर तार हो, करन कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवथ, एहो तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस रखो मन माही नान, या एक आस रखो मन माही, सर्व रोग नानक मिट जाहे, जिस तन को चार कुंट उठता वह, सो तन हर सेवा ते पाव है, जिस सुख को नित बाँछ मीत, सो सुख साधु संग परीत, जिस शोभा को करह पली करनी, सा शोभा पज हर की सरनी, अनिक उपावी रोग न जाए, रोग मिट हरब कदलाए, सर्व निदान मह हर नाम निदान, जप नानक दरगह परवान, मन पर बुद्ध हो हर कह नाए, दह दिस्तावत आवै ठाए, ताको विघ्न ना लागे कोए, जा कह हृदय बसै हर सोए, कल ताते ठंडा हर नाउ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पोबिन सह पूर्ण होए आस, भगत पाए आत्म परगास, चित कर जाए बसै अविनासी, कहो नानक काटी जम पासी, तत विचार कह जन साचा, जन्म मरै सो काच उकाचा, आवा गवन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरदेव, यो रतन जन्म का हुए उदार, हर हर सिमर प्राण आधार, अनेक उपाव न छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन मनछत नानक फल पाए, संग न चालस तेरा तना, तू क्या लपटा वह मूरख मना, सोत मीत कुटुंब अर बनिता, इनते कहो हो तुम कवन सनाथा, राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कवन छुटकार, असहस तीरथ असवारी, झूठा डंप झूठ पासारी, जिंदी ए तिस बुझे न बिगाना, नाम विसार नानक पछताना, गुर की मातू लेह एयानी, भगत बिना बहु डूबे सियानी, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल बिख जाहे, आप जपो अवराह नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो, सारपूत सत हर को नाओ, सह सुभाए नानक गुन गाओ, गुन गाव तेरी उतर समैल, बिनस जाए हम मैं बिख फैल, होए अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम संभाल, छाड़ सियानप सगली मना, सासंग पावै सस्त नार, पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दरगह जयकार, सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख, एको जप एको साला हे, एक सिमर एको मन आहे, कसके गुण गाओ अनंत, मंतन जाप एक भगवंत, एको एक एक हर आप, पूरन पूर रहो प्रव्याप, अनेक विस्तार एक ते पहे, एक राद प्राचित गए, मन तन अंतर एक प्रभ राता,
गुर प्रसाद नानक एक जाता सलोक फिरत फिर।

अष्टपदी। जाचक जन जाच प्रभदान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो। चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत। एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूरन पुरख नहीं डोलाने। सुपर परे प्रेम रस रंग उपजै चाओ साध कै संग। परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रगास अंधे लिवलाग। बड़ पागी जप्या प्रभ सोए नानक नाम रत्ते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पही सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया। इच पुनी श्रद्धा सब पूरी रव रहया सदसंग हजूरी। जिसका साथ तिन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए। सो क्यों बिसर जे काल ना पान सो क्यों बिसर जे किया जान। सो क्यों बिसर जिन सब किस दिया सो क्यों बिसर जे जीवन जिया। सो क्यों बिसर जे अगन मह रख गुर प्रसाद को बिरला लख। सो क्यों बिसर जे बिखते काढ जन्म जन्म का टूटा गांड है। गुरपुरा तत यह बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो एह काम आम त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पाव हो आप जपो अवरह नाम जपाव हो। भगत पाए तरिय संसार बिन भगती तन हो सी चार। सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़त जात पाए विश्राम। सगल दुख का हो वतनास नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर ही सुवाओ। नेत्र हो पेख दर्श सुख होए मन बिगसै साध चरण तोए। भगत जना कै मंथन रंग बिरला को पावे संग। एक बस्त दी जय करमया गुर प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कही न जाए नानक रहे आ सर्व समाए। प्रभ बख्शंद दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटां करत प्रतपाल। आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत। हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए। अनिक राज भोग बडियाई हर के नाम की कथा मन पाई। बहु भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत। पली सो करनी सो बातन मंत हृदय बसे पूरन गुरमंत। साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख ना।

ज्ञान का आपे ही फिर जा पष्टपदी। जब अकारे हो कचना दृष्टि ता पापुन तब कहते होता, जब तारी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरख सोग कोह किस है व्यापत। जब अपन आप आप पार ब्रह्म तब वो कहां किस होत परम। अपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंध मुक्त कहो किसको गनी। जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए। जब अप है आप अपनी ज्योत तर तब कवन निर कवन कत डर। अपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख अपन आसन तह जन्म मरण कहो कहां विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अविगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुट्टे कौन बंधन बांधे। अपन आप ही अचर जा नानक अपन रूप आप ही उपर जा। जह निर्मल पुरुख पुरुख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश तह छल चित्र लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तह किस है भूख कवन त्रिपतावे। करन करावन करने हार नानक करते का नाही सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जह सर्व कला आप है परवीन तह वेद कतेव कहा कुचीन। जब अपन आप उर तार तो सगन अपसगन कहां विचार। जह अपन ऊंच अपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जन हो आप। जह अचल अचेद अपेद समाया वहां किस है व्यापत माया। आपस को अप है आदेश तेह गुण का नाही परवेश। जह एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लाग चिंता। जह अपन आप पतियारा तह कौन कथ कौन सुन नहारा। बहु बेअंत ऊचते ऊंचा नानक आपस को आप है पहुंचा। जह आप रचियो परपंच अकार तेह गुण मह की नो विस्तार। पाप पुन तह पई कहावत को नरक को स्वर्ग बंचावत। आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की ओ बखियान। आपन खेल आप कर देखै खेल संकोच तो नानक एक है। जह अभिगत भगत है आप जह पसर पासार संत प्रताप। तुहु पाका पह तनी उनकी शोभा उन्हूं बनी। आप है कोतक कर अनचोज आप है रस भोगन निर्जोग। जिस पावे तिस आपन न हिलावे जिस पावे तिस खेल खिलावे। बेशुमार अथाह अगंत अतोले ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोले। सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार। नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार। अष्टपदी आप कथ आप सुन नहार। आप है एक आप विस्तार जहां तिस पावे तां श्रेष्ठ उपाय। अपने पाणे लय समाये तुम ते पिन नहीं किछ होए। अपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभ जी हो आप बुझाए। सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का बेता। नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सब ता कह हाथ। दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राख है तिस कोय न मारे। सो मुआ जिस मनोह बिसारे तिस तज अवर कहा को जाए। सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जा कै सब हाथ। अंतर बाहर जानो साथ गुण धान बेअंत अपार। नानक दास सदा बलिहार।
पूरन पूर रहे दया सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव जानै आप अंतरजामी रहो व्याप प्रतपाल जीअन बहु भांत जो जो रचियो सुत सहते आत जिस पावे तिस लय मिलाए भगत करह हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास करमान्या करनहार नानक एक जानिया जन लागा हर एक नाए तिसकी आस न बिरथी जाए सेवक को सेवा बन आई हुकुम बूझ परम पद पाई इसते ऊपर नहीं बीचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर पय निर्वर अंधन पूज है गुर के पैर एह लोक सुखिये पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आप है मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद नाम नाम तत् करो बीचार दुर्लभ देह का करो उदार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का यह सुवाओ आठ पहर प्रपेख हो नेरा मिटे अज्ञान बिनस अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावहो मन इच्छे नानक फल पावहो हलत पलत दोयले हो सवार राम नाम अंतर और तार पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसा तिस साच परीखिया मन तन नाम जपोह लिवलाए दुख दर्द मन ते पहु जाए सच वापार करहु वापारी दरगह निभ खेप तुम्हारी एका टेक रखहु मन माही नानक बहर नाव है जाहे तिसते दूर कहाँ को जाए उपर रखन हार त्याय निरपो जप सगल पौ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुट्टै जिस प्रभ राख तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन को कोय न पहुँचन हार सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रमान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसस होत निहाल ताके निकट न आवत काल अमर पहे अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर किरपाते संत पिटिया नानक मन पर गास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ दीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक स्कट माहे अनेक रंग नाना दृष्टा है नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही मह इसका विश्राम सुन समाद अनहत तह नाद कहन ना जाई अचरज विस्माद तिन देखिया जिस आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहया भगवंत धरन माहे आकाश पया सर्वलोक पूरन प्रतपाल बंतिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंट दह दिसे समाहे तिसते पिन नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमरत मह देख ससियर सूर नक्षत्र मह एक बाणी प्रभ की सबको बोला आप अडोल न कबहूं डोला सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाई है गुण है अमोल सर्व ज्योत मह जाकी ज्योत तार रहो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन मह एहो विसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना का हृदय सब धर्म संत जना सुनह शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी यह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख मान करन करावन हार प्रभ जान अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख
सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत। तिस पावै ता करे विस्थार, तिस पावै ता एकंकार। अनेक कला लखी नह जाए, जिस पावै तिस लय मिलाए। कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप भरपूर। अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। सर्वभूत आप वर्तारा, सर्वनैन आप देखनहारा। सगल समग्री जा कतना, आपन जस आप ही सुना। आवन जानक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नीमाया। सबके मध अलिप्तो रह, जो किछ कहना सो आपे कह। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता लय समाय। इस्ते होए सो नाही बुरा, ओरै कहो किने कछ करा। आप भला करतूत अतनी की, आपे जान अपने जी की। आप सास धारी सब साच, ओत पोत अपन संग राज। ता की गत मित कही न जाए, दूसर होए ता सो जी पाए। तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक एहो जान। जो जान तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभ सोए। ओहो तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुवाओ, जन कै संग चित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा।

राष्ट्रपदी। पूरे गुर का सुनो उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, सास सास सिमरहो गोविंद, मनंतर की उतरै चिंद। आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की तूर मन मंग, आप छोड़ बेंती करहो, साध संग अगन सागर तरहो, हर तन के पर लेहो पंडार, नानक गुरपूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग पज परमानंद, नरक निवार उदार हो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो। चित चित वो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख पंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम सलोक साध के बचन, अमलीक लाल यह रतन, सुनत कमावत होत उदार, आप तरह लोक कह निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग, जय जय शब्द अनाहद वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय। प्रगटे गोपाल।

सब ते ऊचता की शोभा बनी नानक एहे गुण नाम सुखमणि। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। भुखियां भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार सहस सियाणपां लख होए ता एक न चलै नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ै टुटै पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई। हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है। एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है। हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्म है जे बुझे ताहो मैं कह ना कोए। गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जाने निशान गावे को गुण वडियाईया चार गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तन खे गावे को जीला फिर दे गावे को जापे दिसे दूर गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथी न आवे तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे परवाहो साचा साहिब साच नाए पाख्या।

बोले जाना सब सोए रहाओ जिन कन किते अखी नाक जिन जेवा दिती बोले तात जिन मन राख्या अग्नि पाए वाजा पवन आख सब जाए।

गुर सतगुर भरम चुकाया, कहु नानक शब्द मिलाया। राम कली महला पहला, छादन पूजन मांगत भागै, खुदिया दुष्ट चलै दुख आगै, गुरमत नहीं लीनी दुरमत पत खोई, गुरमत भगत पा

कोई, सब जुग मह नाम उत्तम होई, गुरमुख विरला बूझ है कोई, हर नाम त्याए भगत जन सोई, नानक

तिन ऊपर हाथ वतावै। गुरमुख साध सेई प्रभ भाई, कर कृपा आप मिलावै। राम मुको हरजन मेल मन भावै, अम्यों अम्यों हर

काटों काट बाढ सिर राखों, जित नानक संत चढ़ आवै। राम कली महल्ला चौथा, जे वड भाग हुवै वड मेरे, जन मिलदिया ढिल न लाइयै। हर जन अमृत कुंट सरनीके, वड भागी तित

न कोई। मिल सतगुर पुरख त्याई, सतगुर चरण सतगुर शरण परे तिन पाया। मेरे ठाकुर लाज रखाई, एक अपने सुआए एक अपने सुआए आए बह गुर आगै। ज्यो बगुल समाध लगाई, बगुला काग नीच की संगत जाए करंग भिखु मुख लाई। नानक मेल मेल प्रभ संगत, मिल संगत हंस कराई। राम कली महला चौथा।

जो इच्छो हो सोई फल पाव हो, फिर दुख न व्यापै कोई रहाओ। काचे पाडे साज निवाजे, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया धुर करता है।

तही प्रकाश हमारा पयो। पटना शहर बिखै पौलयो। तन तन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहिब कमाल जिन्हां दा प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है, मना रहे हां। कलगीधर पिता जी जदों साहिब जी दा आउणा पटना दी धरती ते साहिब जी दा प्रकाश होया ते कहिंदे ने पीर भीखण साहिब जिहड़ा अंबाले दे नजदीक बसदा है, अज सिजदा चढ़दे पासे नूं कर रहा है। नाल दे संगी साथी हैरान हन, अज पीर जी नूं की हो गया है। आपां वेंदे हां क्योंकि इह लहिंदे पासे नूं सिजदा करदे हां, पर अज पीर भीखण साहिब बार बार सिजदा कर रहा है। जदों नाल दे संगी साथियों ने पूछा, पीर जी की गल, ठीक हो? अज आप जी चढ़दे पासे वल सिजदा कर रहे। कहंदे ने जिसनू मैं सिजदा कर रहा हां, इस दुनिया का मालक, वो अज पटने की धरती ते उसने आना किया है। कोई बंदगी वाली रूह, जुड़ी हुई रूह, जिसनू पता है, जिदे मन में तरला है कि मैं उस परिपूर्ण परमेश्वर प्यारे नू मिलना है। बंदगी तो आप सारे करते हाँ, पर बंदगी एहो जी होवे जिदे नाल पता लग जाए कि मेरा मालक किथे है, नेड़ा है दूर ना जाने, नित सारे संभाले, नेड़ा ना ही दूर। जो एहो जी बख्शिश हो जाए, पीर भीखण साहिब कहिंदे ने तीन महीने तकरीबन लगे ने तुर पए, उस वक्त इतने साधन नहीं सन, तुर के लोग की यात्रा करया करदे सन। तुर पए, तुरे जा रहे हन उस मालक दे कलगीधर पिता जी दे गुण गाउण दे। जदों उत्थे पहुंचे, दर्शना की इजाजत मंगी ते नाल कहिंदे ने दो कुजियां विच परखण लई भी कलगीधर पिता जी वल हथ वधाए ते दोवें कुजियां ते साहिब जी ने हथ रखना कीता। कहे मैं सारे ए अवल अल्लह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन पले को मंदी। ऐसे ही सतगुरु दीन दयाल सतगुरु कलगीधर पिता जी बाल अवस्था विच उन्होंने निर्णय किया कि असी सारे संसार के भले लई दोस्त दोखियन पकड़ पछाड़ो, हमरे सब बैरियन संघारो। जिहड़ी बाणी लिखी है उसते नितरे ने दुष्ट दोखियां का खात्मा किया। बाए गही की लाज अस गोबिंद दास तुहार, साड़ी रखिया साड़ी लाज रखी, हिंदुस्तान की लाज रखी, भावे अपना सारा ही परिवार कुर्बान कर दिता। दीनन की प्रतपाल करे संत उबार गनीमन गारे। दीन आख दिन जिदा कोई आसरा ना हो, साहिब नितानिया का तान आए ना जाई थिर सदा, गुरसबदी सच जान। कलगीधर पिता जी ने साढ़े लई
ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ।

करो कृपा एक बार। एक बार दास बोलेगा, एक बार सारी संगत ने बोलना है। हाल बहुत बड़ा है, तुसी बोल रहे होगे मेरे कन्ना च आवाज नहीं आ रही है। सो बेनती है, एक बार असी बोलांगे, एक बार तुसी बोलना। असी बोलांगे तुसी ना बोलना, तुसी बोलोगे तो असी नहीं बोलना। आप गाण वास्ते आए हैं, फिर एक शब्द की हाजी होर भर के। बहुत ही सत्कार हो गुरु रामदास महाराज जी के वरसाए कीर्तनी भाई साहब भाई इंद्रजीत सिंह जी खालसा जी, वो भी पहुंच चुके हैं। दस दिन के बाद उन्होंने हाजिरी भरनी है। सो करो कृपा उच्ची आवाजाएं चो।

जे अंदरों कपट ना गया तो कोई फायदा नहीं, अंदरों निर्मल बाहरों सतगुरु ऐसी कृपा करो साडे सारिआं दे मन धुप जाण। बाणी धोंदी है, बाणी पाक पवित्र करती है, बाणी निर्मल करती है। वध तो वध बाणी पढ़नी चाहीदी है, गुरसिखां दी गुरमुखां दी संगत करनी चाहीदी है। चार

0: नहीं को मंदा था कहीं जाने पर मानदा अपनी जाना बात बढ़ाई नानक बात प्रभु बनी आई सन बच्चे बच्चे लाया था भी करना जाता है के सन जिला सबका हूँ कहा के सन केवल पर ब्राह्मण के सन सबको उधारा था सन साधी नीति कम निपटारा सन का बुराई करे सेवा था के सन सुबह सुख देवा ब्राह्मण नानी था के सन सबल जनानो
1: Thank you.